तो तुम पे लेना, तुम मेरा गहना, जो तू दे सोई सुख सेना। तू मेरा पिता, तू है मेरा माता,

तेरा खेल अखाड़ा जियो। तुर बिंदु जा और न कोई, सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। क्या कहिए किस आस सुनाइए, जो कहना सब सब्जी पास, सब किता तेरा वरते, सदा सदा तेरी आस। जिदे वड्याई ता तेरी वड्याई,

मन इच पुजाई आस पैर हर त्याय के मन इच पुजाई मन इच पुजाई कर सेवा सेवक पर अपने

सुप्रजे मदिन होत साधु तुरे आवण जान रे चित पाई जन मरन के मिटे वसूरे गुरु नारायण दा गुरु गुर सच्चा सिद्धन हार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानक सब बनिहार हर गुण गाओ सा सुपाई हर गुण गाओ।

हर वेले नाम ही सिमरिया करो और परमात्मा दा नाम अमृत पींदे रहा करो। साई फरमाउंदे हन के इस नाम दी किस नू प्राप्ति हुंदी है,

सिखी किन्नी प्यारी है सिख नू, ओ मेरी मां नहीं, हो सकता है ओदे पुत्र दी शक्ल मेरे नाल मिलदी होवे, पर ओ सिंह दी मां नहीं हो सकती, क्योंकि सिंघां दियां मामां इंज सिदकों डोल दियां नहीं होंदियां। मां नस के आई, पुत्र कह दे एक वारी मैं सिंह नहीं, क्यों जान गुआंदा है, ए तेनू छड देणगे। अज गुरु दा सिंह जोश विच पार आया, याद कर ठंडे बुरज दी कहानी, सरहंद दा साका अजे बहुते दिन नहीं होए, किवें माता गुजरी ने अपने बच्चियां नू सेरे बन के मौत वल भेजिया सी, भुल गई है, याद कर। सिंघां दियां मामां कदों सिदकों डोलदियां ने, ओ ते आखदियां ने जा पुत्रा, अज गोविंद सिंह नू तेरे सिर दी लोड़ है, मेरी कुख सफली होवेगी। पुत्र दियां एहो जियां गल्लां सुन के मां दा सिदक जाग उठिया, ऐ कलगियां वालिया, इस हिंदुस्तान दी धरती खातर तू अपना पिता वार दिता, बुढ़ी मां वार दिती, चारे लाल वार दिते, सारा सरवंस वार दिता, ते मैं अपना एक पुत्र लगोई जांदी हां। मां दा सिदक जाग उठिया, आप मुहारे ही मां दे मुख विचों कलगी तरदे जकारे निकल रहे।

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश कीती गई है। आप समूह संगत नूं खालसा जी दे 300 साल जन्म दिवस की लख लख वधाई होवे। सतसंगियो आस है कि इन्हां दी ए सेवा आप कबूलोगे कि अगों वास्ते अरदास करोगे महाराज बख्शिश करो। ऐसे ही तरह आप संगतां दी ए सेवा करदे रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसतां इतिहास दियां कैसतां घर घर विच

रोज पढ़ दे राती रुति थिति वार पौन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल। ए धरती मालक ने धर्मशाल बनाई, धर्मशाल ओनू कहने जिथे धर्म कमाया जावे, धर्म दी गल चले। ए धर्मशाल ओनू भी कहंदे ने जिथे रात दी रात रह के अगे तुर जाना हो। ए धरती दोहां तरह नाल धर्मशाल है, इथे असी धर्म कमाउण आए, धर्मी होण आए हां। मनुख जन्म मिलिया तां धर्मी होना है, पर नहीं साडे कोल तां गलती हो गई, पसारे पा के बह गए। महाराज कहंदे ने तां उस तरह गल है जिवें कोई चरवाहा पशु चराउण वाला अपना इजड़ लै के किसे चरागाह विच किसे ऐसे थां ते जिथे पशुआं नूं चारा सौखा मिल सके उथे लै के आया। पशु चर रहे ने, पशु घा चर जाणगे, रज जाणगे, मोड़ के टिकाणे ते लै जाणा। चट घड़ी दी खेड है, कुछ घंटियां दी गल है, लेकिन चरवाहे ने उन्हां घंटियां वास्ते उस जगह ते मल मार ली, उथे पसारा करना शुरू करता है, पकड़ करके बैठ गए। बल्कि इथों तक भी कई बार कहिंदा है मेरी चरागाह है, मेरे पशुआं दे चरण दी थां है। हालांकि ना पशु ओहदे, ना धरती ओहदी, ना मलकीयत ओहदी, बिल्कुल एवें बंदे नाल होया। धरती ते आया सी, जीवन मिलिया सी, धर्म कमाउण वास्ते ते आ के तुर जाण वास्ते, पर इह तां पकड़ करके बैठ गया। धर्मशाल नूं घर बना के बह गए, पसारा पा के बह गए। महाराज कहंदे ने जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है घर बारा। ऐसा ना समझना कि जो कुछ संसार दी उसारी है ये रोक दिती जावे, कंस्ट्रक्शन रुक जावे, ऐसा नहीं है। संकेत सतगुरां दा, क्योंकि गुरु घर विच तां आप बड़ियां बड़ियां वड्डियां उसारियां होईयां, और साहिब गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह दे कोल एक साईं लोक ने प्रश्न भी कीता सी। कहन लगा महाराज की फकीरी ते की ये उसारियां, किले कोट नगर बड़ा लंबा चौड़ा पसारा है। महाराज ने क्या उरे हो, नेड़े हो जरा। सिर ते हथ रखता साहिबां ने, महाराज ने सिर ते हथ रखिया, एकदम की वेखदा है किसे स्वर्ग लोक च पहुंच गया, किसे बहिष्त च जा पहुंचे। लेकिन देखिया उस स्वर्ग विच, उस स्वर्गी वातावरण विच कुछ रूहां कुछ आत्मावां ऐसियां भी ने, कुछ स्पिरिट्स ऐसियां भी ने जिन्हां नूं उचेचा सुख उचेचा आराम ते उचेचा सहूलतां दित्तियां जा रही ने। पंगूड़ियां विच पै के झूट रहे ने, हैरान हो गया, पुछदा है एक ही पंगूड़े विच झूटदी मौज माणदी एक आत्मा नूं पुछदा है, कहिंदा है ऐसा केड़ा पुन तू कीता है, स्वर्ग स्वर्ग विच होर महास्वर्ग, सुखां दे वातावरण विच होर वधेरे सुख, कि तैनूं किस पुन करके मिले। वो आत्मा कहिंदी, वो रूह कहिंदी, वो कहिंदी साईं लोका मैं शेर दी जूनी छड के आया। कमाल है, शेर नूं स्वर्ग, शेर दी आत्मा नूं, शेर दी रूह नूं स्वर्ग, ते ओह वी परम सुख वाला। कहिंदा कारण है शेर सा बुढ़ा हो गया, अपनी कगार तो बाहर निकलिया शिकार करन, पर कमजोर शरीर करके कोई शिकार नहीं मिलिया, भुखदा मारिया भटकदा फिर रहा सी। उत्तों अचानक घटा आ गई, मैं पिछा नूं परतिया, पर वो घटा पहला वरनी शुरू हुई, फिर गड़े पैन लग पे, बर्फ दे गोले डिगने शुरू हो गए। मैं बहुत तेजी नाल वधिया अपने कुरने वल, अपनी कगार वल, लेकिन इन्हां गड़िया दी मार तो बचन वास्ते दो मनुख उसे कगार दे विच ही आसरा लेख लोते सन।
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘੁਰਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਗਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ

मत नाल वाहिगुरु याद करना सी, ओह मत पसारिया ने मार ली, नहीं इथे ता आउना ते जाना है, इथे ता धर्म कमाउना है ते धर्मशाला जान के टिकना ते तुर जाना है। मन इथे नहीं लाउना, मन ओहदे नाल लाउना है जिसने भेजिया है ते बुलाउना है। महाराज कहंदे ने कोयल आया कोयली क्या तिस डंफ पसार, मोहलत पुन्नी चलना तू संभल घर बार, हर गुण गाओ मना सतगुर सेव प्यार, गुरु की सेवा प्यार नाल कल प्रभु नु याद कर ओदे गुण गा, क्या थोड़ी बात गुमान जैसे रैन प्राहो ने उठ चल से प्रभात, क्या तू रत्ता ग्रस्त से ओ सब फुला की बागात, मेरी मेरी क्या करें जिंदिया सो प्रभ लोड, सर पर उठी चल सा चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी प्रमतिया सो दिन लख चौरासी प्रमतिया दुलभ जन्म पायो, नानक नाम संभाल तू जिदी लोड़ है तेन, इथे भी ते दरगाह विच भी जिसने तेरा मुख उजला करना है।

देव पिया मानो के नाम जपण वालियां दे देवते, नाम जपण वालियां दे वड्डे जिन्हां नूं सारियां ने सत्कारिया, ऐसे भगत नामदेव ने बचपन दे विच नारायण नूं प्रगट करके दुध पिलाया ते शब्द उचारण होया दूध पियो गोविंदे राये, दूध पियो मेरो मन पतिया, नहीं ता कर को बाप रिसाए। ते कहंदे ने आखर भगती परवान होई नामदेव जी दी, ते दूध पियाए भगत कर गया, नामे हर का दर्शन भया। नामदेव नू हरी दे दर्शन होए ते भगत नामदेव दे प्यार वाला दूध नारायण ने पी के बख्शा कीतिया। ते इसे तरह भगत नामदेव संतां दा संग कर दे, नाम जप दे, परमात्मा नू याद कर दे, अपनी उम्र बितांदे गए। थोड़े जे वड्डे होए ते उस वक्त दे महान योगी, महान तपीश्वर जिन्हां दा इक पंथ चलदा सी, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज, स्वामी ज्ञानेश्वर जी महाराज दे पंथ दे विच दाखल हो गए ते चल पे उन्हां दे

बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ए मेरे नाल जो चले

ओ नारायण ने सुनी जिस तरह ही तत्काल ए अरदास सुनी ते ओसे खूह दे विचों एक कड़क दी आवाज आई मानो के धरती फट गई उस खूह दी ते थले जो पानी सी ओ लबा लब खूह दे विच पर आया। जदों देखिया ज्ञानेश्वर जी ने और उना दे सेवका ने के भगत नामदेव दी अरदास उस नारायण दे चरना कमलां विच कबूल होई है तां सारे आए

नामदेव हुण तूं अपनी प्यास बुझा लै, तेरी नारायण ने सुन लई, आइंदा समें विच जेड़े भी इस राह तों गुजरनगे ओ अपनी प्यास तेरी अरदास दी शक्ति द्वारा बुझाया करनगे।

मगर नामदेव दिखाई नहीं दिते, क्योंकि नारायण दे चरना कमला विच जुड़े ते ज्ञानेश्वर जी ते उना दी मंडली ते अगे नू चाले पा गए, मगर नामदेव दी समाधि खुली ते की देखदा है कि उस चौंक दे नेड़े तेड़े एक पठान खलोता है, ते उस पठान ने पगड़ी पाई हुई है, ते उस पठान दे कोड़ी ने वछेरा दिता है, कदी वछेरे वल देखदा है नामदेव ते कदी उस दी पगड़ी वल देखदा है, ते पठान नू देखदे देखदे मानो पठान दे रूप विच्चों नारायण नू देखदा होया।

हलत पलत दोइले हो सवार, राम नाम अंतर उर्धार, पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसे तिस साच परिख्या, मन तन नाम जपो लिवलाय।

संत बाबा तरसेंगे, महापुरुष मस्तु आने वाले। कोल गुरसिख बैठे ने, एक कल्याण सिंह भी बैठे। महापुरखा ने आख्या, अज भई चित कर दे धर्म दे किरत दी रोटी खाई। किरत दी रोटी, कहन लगे महाराज जो हुक्म अज ही प्रबंध कर लेने आ। मजदूरां वाले कपड़े पा ले, एक ठेकेदार दे कोल चले गए जेड़ा बिल्डिंग बना रहा सी। भाई कल्याण सिंह जी पंच सत गुरसिखां नूं नाल लेके जदों उहदे कोल पहुंचे हन, कहन लगा जी असीं मजदूरी करना चाहते हां, करो। अठ घंटे कम करना पएगा। ठीक है, करांगे। मजदूरी तय हो गई, जितना कम अठां घंटियां विच करना सी चौं घंटियां विच कर दिता। एक बारी प्यार नाल बोलिए सतनाम श्री वाहे। ठेकेदार ने बुला के आख्या, ऐ फड़ो पैसे ते जाओ। कहन लगे नहीं, वायदा अठ घंटे दा। फिर दुगनी मजूरी देन लगा, कहन लगे नहीं जो बचन होया है ओ ही लवांगे। कहन लगा पहले मजदूर वेखे ने अजीब आदमी हैं, ऐसे बंदे ता मिले नहीं। खैर जदों उन्हां पैसियां दा समान लियांदा, आटा घ्यो दाल ते फिर हथी बना के बाबा अतर सिंह जी नूं छकाया, छक के बाबा जी इतने प्रसन्नता विच आए, कहन लगे अज ते लंगर छकण दा आनंद आ गया, कल आपां भी चलांगे भाई। बाबा अतर सिंह जी ने भी मजदूरां वाले भेस कर ले। अज उसे ठेकेदार कोल पहुंचे, अज भी भाई काम मिलेगा। ते ठेकेदार उन्हां वल बार बार तक रहे है कि ए मजदूर नहीं हन, ए कोई फरिश्ते नहीं, ए कोई होर लोक दे बंदे आए हैं। ते जदों वेखद्या वेखद्या बाबा अतर सिंह जी ते निगाह पई ते चरना ते डिग पिया, कहन लगा तू मजदूर नहीं है। ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुन पदार्थ पाया, अनक जतन कर हृदय राख्या, रतन न छपे छपाया। गुरु की सात संगत, कहन लगा तुसी मजदूर नहीं ते कल दा ही मेरे दिमाग ते बड़ा बोझ पिया होया है, ते अज तुसी आए हो, मैनू माफी दे दियो। मैं ए गुनाह नहीं कर सकदा कि तुसी मेरे सामने टोकरी चुको। कुछ सिख लंघ रहे सन, उन्होंने वेख्या होए बाबा अतर सिंह जी इत्थे खड़े ने, झट चरना ते मथा टेकिया। गुरु की सार संगत, कहन लगे बाबा जी आप दी किरत तां एहो ही है कि आप कीर्तन सुनाओ, सानू चंगे राह लाओ, ते आप इस भेस विच खड़े हो। ते फिर कहंदे ने बाबा अतर सिंह जी ने सिंघां वल वेख्या,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਕੜੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਾਡਾ ਲੰਗਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ 18 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਥੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ 18 ਹੀ ਦਿਨ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੰਨ ਭਾਗ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦੇ ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਭੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲਾਵਟ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ।

0: वचन प्रवान करने गुरु पातशाह दियां हाजरियां धरती प्रवान करन भुला चुका खेमा पते बुलाइए वाहिगुरु जी का
1: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.

कुछ वड्डे होए, चार पांच साल दे लगभग आप दी उम्र, रोज छोटे छोटे बच्चियां नू नाल लैके ते गंगा दे किनारे खेलने जाउंदे सन। इस गंगा दे घाट ते शिव दत्त पंडित नाम करके एक पंडित तपस्या करिया करदा सी। 70 साल दी जिस दी उम्र, श्री रामचंद्र भगवान जी दा उपासक सी। रोज मूर्ति श्री रामचंद्र जी दी अगे रख के, प्रसाद अगे रख के अरदास करदा सी, हे भगवान भोग लाओ। और इस शिव दत्त पंडित नु एक बार अपना दर्शन दियो प्रभु। रोज अरदास करे कि इतनी मेरी उम्र हो गई, हुण मैं बुढ़ा हो चलिया हां, एक बार अपना दर्शन करा दियो। किते ऐसा ना होवे कि तेरे दर्शन कीतियां बगैर ही इस देही विचों प्राण निकल जान। सात सगत बोलो श्री। और फिर मैनू आ तेरे दर्शना वास्ते फिर जन्म लेना पवे। हे मेरे प्रभु, एक बार दर्शन कराओ। आज जदों अरदास कर रहे है, इस दी अरदास क्योंकि बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। जदों कोई मन नाल प्रेम नाल अरदास करता है ता उस दी अरदास प्रभु दे चरणा विच पहुंच दी। गोविंद राय जी खेडदे होए आ गए ते पंडित शिव दत्त नु वेख्या के बेनती कर रहे, प्रभु भोग लाओ, प्रसाद अगे रखिये, लड्डुआं दा थाल भगवान श्री रामचंद्र दी मूर्ति अगे अरदास विच जुड़े है। ताई गोविंद राय जी ने आके थाल विचों एक लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया। पंडित शिव दत्त ने देखिया के कोई बालक है और थाल विचों प्रसाद दा लड्डू चुक के मुंह विच पा लिया, ता पंडित शिव दत्त नु बड़ा क्रोध आया। कहन लगा, तू कौन है और मेरी पूजा विच विघ्न पा रहे है, जा चला जाए तू, ते फिर कल या दोबारा आके मेरी पूजा विच विघ्न नहीं पाऊंगा। साहब जी चले गए बच्चियां नाल खेडदे होए गोविंद राय जी अगे। अगले दिन पंडित शिव दत्त फिर जदों पूजा विच जुड़िया और अरदास कीती, भगवान भोग लाओ, गोविंद राय जी फिर खेलते हुए आए ते फिर थाल विचों लड्डू चुक के मुंह विच पा ले। सात सगत बोलो श्री। आज पंडित शिव दत्त बड़े गुस्से विच गोविंद राय जी दे पिछे पिछे दौड़िया पकड़न वास्ते, अगे अगे गोविंद राय जी, पिछे पिछे पंडित शिव दत्त।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक हो। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करान। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, ओ सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरां चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच भर के अपने अपने करां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नूं कोल सदिया, अपने हिरदे नाल ला के
पाई लैने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लैणिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तो मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हन और की कहिंदे हन।

सुनिए सिख सही साहब जी कहंदे हन आ दुनिया दे लोको मेरी एक सच्ची सिख्या लै लो। आख्या महाराज केड़ी

लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही उथे तेरी वही कड़ी जाएगी तेरे लेखे जो तू लिखे हैं तू आप लिखे किसी होर ने नहीं लिखे इस वास्ते खुड़ मनुछा जीवन है नाम जप के सिमरन करके भजन करके अपने चंगे कर्म बना लै नहीं तो साहब गुरु नानक पातशाह।

0: एडे कीमती श्वास पाए जिन्हां नाल तैं जपना सी श्री वाहिगुरु। उस मालक नूं ही विसार बैठा, इत्थे दी तां सोझी रही, इत्थे तां चंगा घर बना लिया, लेकिन अगां जिस घर विच जाके रहना सी उहदा चेता ही कोई नहीं। साध संगत बोलो श्री जो कर छड गवावना सो लगा मन माहे, जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता न, ओ अगे दी चिंता तेनू विसर गई। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह संसार नू तारदे होए एक नगर दे बार आके बैठे, की वेख्या एक बिरध बाबा जो अपने बच्चियां नू बड़ी ताड़ना कर रहे, ए कम करो ओ कम करो, जे कम नहीं करोगे तां भुखे मर जाओगे। ते इस बिरध बाबे ते धन गुरु नानक पातशाह दी नदर पै गई, ते आख्या जा मर्दानिया ओ बाबे नू बिरध नू इत्थे साडे कोल लै के आ। मर्दाना गया आख्या बाबा तेनू परमेश्वर दे रूप धन गुरु नानक पातशाह जो इस वक्त जगत नू तार रहे हैं आज इस नगर दे बार आए हैं और उना दी नजर तेरे उते पै गई है, उना ने तेनू अपने पास बुलाया। ते जदों ओ बिरध गया ते पातशाह धन गुरु नानक देव कहण लगे आ बिरध बाबा हुण तां घर दे जंजाल छड दे, क्योंकि बहुत बीती थोड़ी रही, बहुत बीत गई है, हुण तां थोड़ी रह गई है, पता नहीं किस वेले मौत दी छल आवे ते आ इस बूटे नूं रोड़ के लै जा। साथ संगत बोलो श्री हुण परमेश्वर दा नाम जप लै, वेला है। जे नाम जप लवे तां असी तेनू मुक्त कर देंगे। ओ बिरध बाबा कहण लगा पातशाह अपनी मुक्ति तुसी अपने कोल रखो, मैं मुक्त होना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि जे मैं ना होवा तां घर दे आ कम कार कौन करेगा, धंधे कौन चलाएगा, आ मेरे पुत्रां नूं तां कोई सोझी नहीं। साहब जी कहन लगे अच्छा भाई तेरी मर्जी, असी तां हुण बचन कर दिता है तेनू मुक्त करन दा, लेकिन हुण जदों तू कवेंगा ना मुक्त कर तां करांगे। सात संगत बोलो श्री साहब जी चले गए। कुछ समा पा के मुड़ उस नगर विचों लंघे, उस बिरध बाबे दे परिवार ने गुरु नानक पातशाह नू पछाण लिया। बिरध बाबे दे लड़के धन गुरु नानक पातशाह नू अपने घर लियाए, आख्या महाराज तुसी ओही हो जो साडे आ बुजुर्ग पिता नू उपदेश दिता सी कि नाम जप लै मैं तेनू मुक्त कर दिया। पातशाह कहन लगे हां किथे है ओ, अंतर जामी सब कुछ जान दे। आख्या किथे है ओ, तां परिवार दिया ने आख्या जी ओ तां कुछ साल हो गए हैं, ओ तां गुजर गए हैं। साहब जी कहन लगे अच्छा अंतर ध्यान हो के जां तकिया तां गुरु नानक पातशाह ने के ओ बिरध बाबा इना दे ही घर बलद दी जून पा के, बैल दी जून पा के खड़ोता है। साथ संगत बोलो श्री साहब जी ने मर्दाने नु आख्या जा ओ सामने बैल खड़ोते ना, ओदे कान विच पिछले जन्म दी सोझी पा, आख तेनु गुरु नानक पातशाह आए हन मुक्त करन वास्ते, जे तू आखे तां कर देइए। उने सिर हिलाया जिवें कहिंदा होवे कि मैं मुक्त नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि 500 दा तां जे मैं मर गया 500 दा तां ए नुकसान होवेगा परिवार नूं, ते 500 दा नवा बैल लियाना पवेगा, मैं मुक्त नहीं होना चाहुंदा। पातशाह से कहण लगे चल मर्दानिया अजे इसने होर मोह दियां चपेड़ां खानियां। कुछ समा बाद गुरु नानक पातशाह मुड़ उत्थों दी लंगे तां की वेख्या, आ बिरद बाबे दी आत्मा कुत्ते दी जूनी विच घर दे बाहर खड़ोती हुई है, कुत्ता बनिया पे। साहब जी कहन लगे, आ मर्दानिया आ जेड़ा आ कूकर बैठा है ना कुत्ता, आ पता ही कौन है, आ पिछले जन्म विच ओही बिरद बाबा है। पातशाह इस हालत विच आख्या, हां हुण भी जाके पुछ ले जे मुक्त कर दईए इसनू। मर्दाने ने पिछले जन्म दी सोजी दे के उसदे कान विच याद कराया, ते ओ इवें भोकिया जिवें कहिंदा होवे, ना महाराज मैं अजे भी मुक्त नहीं होना चाहुंदा, क्योंकि मेरे जेड़े लड़के हन ना ओ ऐसे अणभोल हन, जो सौंदे हन उन्हां दी नींद ही नहीं खुलदी, ते मैं इस वास्ते बाहर खड़ोता हां पैरे ते के कोई घर दा धन ना लुट के लै जावे। साध संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: साहब जी हसे आख्या, चल मर्दानिया अजे होर जूनिया पाल। कुछ समय बाद जदो एक मरन लगा, ख्याल उस थां ते गया जिथे घर विच तन दबिया सी, ते सप दी जूनी पा के उस तन ते जा बैठा। एक दिन घर कोई नहीं सी, आ जितने आदमी सन खेतां विच गए सन, माइयां बीबियां कपाह चुनन गईयां सन, एक गोदी दे बच्चे नू पंगूड़े विच पा गई, ते जदों ओ पिछों बच्चा रोया, ए मोह दा मारिया होया कि मैं जाके बच्चे दा मन परचावां, खुड विचों निकलिया, रस्सी दे राहीं उतरदा होया पलंग ते पंगूड़े विच आ रहा, ए नहीं समझिया कि मैं सप दी जून विच हां। ताईं किसे ने वेख लिया, लठा नाल मार मार के थां ते खत्म कर दिता। गुरु नानक पातशाह चौजी प्रीतम संसार नूं तारदे होए कुछ वरिया बाद मुड़ उस नगर विचों दी लंघे, तां की वेख्या, ए बिरद बाबे दी आत्मा एक कीड़े दा रूप धार के गंदी नाली विच पई होई है। साध संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: साहब जी ने आख्या, मर्दानिया आ जेड़ा कीड़ा नाली विच पे है ना, इस नू बाहर कट। ओ पातशाह इस कीड़े नाल तेरा की कम है? मर्दानिया कम है। मर्दाने ने टके दे नाल कीड़े नू बाहर कढ़िया, साहब जी ने उत्ते जल पुआया, अपनी तली ते रख के पिछले जन्म दी ज्ञात दे के आख्या, क्यों बिरद बाबा तेनू हुण भी मुक्त कर दिए जा हुण भी जोनिया भोगणियां ने? साध संगत बोलो श्री
1: वाहिगुरु।
0: उस वेले शरीर कड़कड़ा के साहब जी ने ज्ञात जो सोजी जो दे दिती सी, ते फिर आवाज आई, पातशाह मेनू हुण मुक्त कर दे, मैं इस मोह दे किचड़ विच पै के बलद दी कुत्ते दी सप दी कीड़ा आदक जूनिया पाईयां, आ जिन्हां दे वास्ते मैं एडे पाप कीते, जिन्हां दे खातर मैं लोकां नूं धोखे दे दे के धन कट्ठा कीता, ओ परिवार दा कोई भी संबंधी मेरे नाल ना निभिया, इस वास्ते पातशाह जी हुण कृपा करो, बहुते फिर वहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करके बख्श लो। साहब जी भी क्यों देख ना पानी विच, बहुते फिर बहे किरपन को अब किछ कृपा कीजे, हुण कृपा करो पातशाह जी, हुण मुक्ति देओ। तां साहब जी ने जल दे छट्टे दे के आप निरंकार दा रूप संतान गुरु नानक पातशाह पशु परेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, किस किस नु नहीं तारे, आ कीड़े ऊपर भी जल दे छट्टे मार के आख्या, जप श्री वाहिगुरु, तुसी भी जपो सारे श्री
1: वाहिगुरु,
0: सत नाम श्री वाहिगुरु दे छट्टे मार के जदों उस कीड़े नु साहब जी दी नजर पई, तां ओ कीड़े दी जून छड़ के बिरद बाबा दिव मूरत धार के गुरु नानक पातशाह दे अगे आ खड़ोता। सारे ही परिवार दे संबंधी लोक पिंड दे वासी इकट्ठे हो के आ चोज वेख रहे हैं। आवाज आई बिरद बाबे दी उस रूप विचों, परिवार दियां नूं आख्या, आ जो महापुरख आए हन ए रब दे रूप हन, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਿਆਣਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨ ਸੁਣੀਏ ਸਿੱਖ ਸਹੀ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਤੈਨੂੰ 24,000 ਸਵਾਸ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਿਹਾੜੀ ਇੱਕ ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ 24,000 ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
0: ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੇ ਕੋਈ 6 ਮਾਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਦਾ ਜਾਮਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆ ਮਨੁੱਛਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਉਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਦੁੱਧ ਵਰਤਣਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਿਆਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸੁਣੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਉਹ ਕਬੀਰ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਅੰਤ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਲੈ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰੇ ਮਨ ਸੁਣੀਏ।

पाट जिसका नाम मथुरा है, आप कहिंदा है जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए। जो भी प्यार नाल मन करके गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम जपेगा, जो एक वरा मन करके प्यार नाल आखेगा धन गुरु अर्जन देव, सारे प्यार नाल जपो धन गुरु अर्जन देव। जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आए, ओ फिर कदे भी गर्भ जूनिया विच नहीं पवेगा, 84 लाख त्रिगट जूनिया तो मुक्त हो जाएगा। जब लो नहीं भाग लिलार उदे, तब लो परम ते फिरते बोताए। मथुरा कहिंदा है पट के जब तक साडे भाग नहीं समझागे असी संसार विच विचर रहे सन, लेकिन कल युग दे विच आके सानू जदों गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन होए ते सचमुच फिर उस हरी विच और गुरु अर्जन विच कोई फर्क नहीं है, क्योंकि गुरु अर्जन देव पातशाह गुरु नानक दे पंजवें स्वरूप, पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव महाराज, और जिस गुरु नानक दी उस्तत गावें जनकाद जुगाद जुगेसर हर रस पूरन सर्व कला, गावें सनकाद साध सिदादक मुन जन गावें अछल छला, गावें गुण तोम अटल मंडलोय, भगत पाए रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानी। उस गुरु नानक दे गुण जो राजे जिनक दा दरबार लग्या सी और उस दरबार विच वड्डे वड्डे रिखी महापुरख तपस्वी जोगी आके राजे जिनक दे चरणा दी धूड़ लै रहे सन, क्योंकि भाई गुरदास जी कहिंदे ने भगत वड्डा राजा जिनक है गुरमुख माया विच उदासी। राजा जनक जिसने बड़ी तपस्या की और भगत वड्डा क्यों गिनिया गया है, क्योंकि राजे जनक ने राज विच रह के अपने आप नू माया तो निर्लेप रखी है। साथ संगत बोलो श्री ते भाई गुरदास जी कहिंदे इस वास्ते राजा जनक वड्डा है। ते एक वरा दा जिक्र राजा जनक देव लोक नूं गया, देवते भी लोचते हन कि कोई जपन वाला साडी पुरियां विच चरण पावे। जिस वेले राजे जनक नूं देव लै के देवते लै के अपनी पुरियां विच जा रहे सन ते रस्ते विच बड़े रोण दी कुरलाउण दी आवाज आई, राजे जनक ने पुछया ए कौन रो रहे हन, देवतियां ने दस्या महाराज ए नरक हन जिथे पए हुए जीव अपने कर्मा दे अनुसार भोग भोग दे, क्योंकि इन्हां जीआं ने जाके संसार ते नाम नहीं जपिया, भगती नहीं कीती, इस वास्ते भगती ना करन करके इन्हां ने अपना मनुखा जन्म जेड़ा हीरे लालां तो भी महंगा सी, जेड़ा स्वास हीरे लालां तो भी महंगे सन, इन्हां ने मिट्टी विच रोल दिते। ताई आखिया

तू स्वास दसम द्वार ते चढ़ा लै ते असी तेनू एक मठ विच पा देंदे हां ते धरती पुट के तेनू उस धरती विच दब देंदे हां। जितों कलयुग आवेगा कलयुग दा समां ते गुरु नानक निरंकार गुरु नानक बन के संसार ते आएगा ते रिखी ने आखिया मैनू मैं गुरु नानक नू किवें लब्बांगा। राजा जनक कहन लगा तेन गुरु नानक लभन की लोड़ नहीं गुरु नानक आपे ही तेन लभ लेगा। सात संगत बोलो श्री ते जदों फिर समा बदलिया कल युग का समा आया ते गुरु नानक जदों पंजवां गुरु नानक बनिया गुरु अर्जन देव महाराज ते जिस वेले संतोख सर जिथे अज पवित्र अमृतसर की धरती ते संतोख सर का सरोवर है उसकी खुदाई हो रही सी गुरु अर्जन देव पातशाह टाली तले बैठे सन। इस गुरुद्वारे नू टाली साहब करके भी नाम प्रसिद्ध है ते जिस वेले सरोवर दी सेवा हो रही सी तां खुदाई दे वेले जदों प्यार वाले खुदाई कर रहे सन ते ओ कई उस मठ नू जाके लगी ते सिखां ने आके बेनती कीती गरीब निवाज कोई मठ है ते जापदा है उदे विच कोई रिखी है। साहब गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे हां एक रिखी है जो राजे जनक दे समय तो साडे दर्शन करन वास्ते पिया है। गुरु अर्जन देव महाराज आए उस मठ नू एक एक इट अपनी हाथ नाल हटाई किते रिखी नू लग ना जावे ते ओ रिखी एक शरीर दा पिंजर ही रह गया सी। गुरु अर्जन देव पातशाह ने अपनी गोद विच उदा सिर रखिया मुख ते छटे देते जल दे सिर ते हाथ रखिया ते रिखी ने अखां खोलियां पुछिया केड़ा समां है तां गुरु अर्जन देव महाराज कहन लगे कल युग है कल युग कमिया। रिखी कहन लगा मैनू कल युग दी तत्ती वाह ना लगे मैनू बचा लो ते फिर झट ख्याल आया ओह मैं आप ही तां कल युग विच आउणा चाहुंदा सां कि मैं गुरु नानक दे दर्शन करां उस निरंकार दे दर्शन करां ते फिर कहन लगा रिखी के कल युग विच गुरु नानक ने आउना सी। गुरु अर्जन देव पातशाह जिन्हां दी गोद विच रिखी दा सिर है दसम द्वार तो स्वास तले उतरे गुरु अर्जन देव पातशाह ने सिर ते हाथ रख के स्वास उतारे ते पुछदा मैं गुरु नानक दे दर्शन करने हैं। कोल खड़ोते बाबा बुढ़ा जी कहन लगे पंजवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव महाराज दी गोद विच ही तेरा सिर है रिखी। सात संगत बोलो श्री। उस वेले जिस वेले रिखी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे दर्शन कीते कहन लगा सचमुच गुरु अर्जन देव ही हरि दा रूप है। ता फिर उस रिखी ने गुरु अर्जन देव पातशाह दे चरणों विच विश्वास छड्ड दित्ते ते फिर जूनिया तो मुक्त होके निरंकार दे देश चला गया। ताई आख्या जपियो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। जो भी गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम प्यार नाल सिदक नाल परोसे नाल जपेगा प्यारी सात संगत ओ जूना तो रहत हो जावेगा। जूना दे फिर 84 लाख त्रिगड जूना विच ना आवेगा ओ जो जपेगा तन गुरु अर्जन देव पातशाह दा नाम आओ प्यार नाल जपिए।

कृष्ण कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साल जन्म दिवस की लख लख बधाई होवे। सतसंगियो आस है कि इन्हों की यह सेवा आप कबूलोगे कि अगों वास्ते अरदास करोगे महाराज बख्शिश करो। ऐसे ही तरह आप संगतां दी ये सेवा करदे रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसतां इतिहास दियां कैसतां घर घर विच पहुंचांदे रहन।

माता तृप्ता दी कुख चो जदों जन्म लिया दौलतां दाई ने वेख्या के जिस कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है वो सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है और जिवें हजारां नहीं लखां नहीं करोड़ां जय जयकार दियां आवाजां आ रही हैं और एक ऐसी महक उस कोठड़ी विच प्रकाश उस कोठड़ी विच जिस वेले ए बालक ने जन्म लिया आ जन्म लेंदियां ही आ बालक मुस्कराया हैरान रह गई दौलतां दाई मेरे हथां विच अनेक बालक पैदा होए लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है। दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई सत सिखत बोलो श्री बधाई दीती से बार आई कोठड़ी विचों बधाई दीती मेहता जी वधायो तुहाडे घर ता कोई अनोखा ही बालक जन्मे जिसदे जन्म लेंदियां ही सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई जय जयकार दियां आवाजां आ रही हैं चारे पासे सुगंधी फैल गई है मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है ए ता कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है सत संगत बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता मेहता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा।

पंडित हरदयाल उठ के बैठा, मेहता जी नू बिठाया कोल कालू जी नू। मेहता कालू नू कोल बिठाया, पुछया कितने बजे होया बालक, आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदों पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब पढ़ा के तैयार कीता, ते जदों लिखन लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा, मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मैनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा, क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा के मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। सत सगत बोलो श्री, ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मेहता कालू नू वधाइयां मिल रहियां हन कि अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है। प्यारी साध संगत, आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चा पातशाह है।

जो मेरा नुकसान होया है आ नुकसान मेरा पूरा कर। साहब जी कहन लगे आ फिक्र क्यों कर दे भाई, जे खेती तेरी गाइयां मजियां खा गईयां ता कोई गल नहीं, परमेश्वर तेनु होर देवेगा, होर देगा ते। उन्हें आख्या प्रभु ता परमेश्वर पिछों देवेगा, पहला तू मेनु हर जाना दे। साहब जी दी बांह पकड़ ली, आख्या जे हर जाना नहीं देगा ता तेनु राय बुलार को लै चला। गुरु नानक दी बांह पकड़ के खेत दा मालक जदो राय बुलार दे कोल पहुंचया, आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे सारे खलियान खराब कर दिते, सारी खेती उजाड़ दी। हुण मेरे गरीब दा हरजाना कौन भरेगा। राय जी ने पछाण लिया ए ता मेहता कालू पटवारी दा पुत्र है। आख्या नानक तूवे क्यों कीता, आख्या मैं ता उस प्रभु दे रंग विच बैठा सां, मैनू नहीं पता। मैं ता कालू नू सदिया, मैं ता जी जदो आए राय ने आख्या वेख वही तेरे पुत्र नानक ने गाइयां मजियां आ दूजे दे खेत विच छड के सारा खलियान खेत खराब कर दिता, एदा हरजाना भर भई, तेरा पुत्र है ना नानक। मैता कालू कहन लगा ए ता है ही निखट्टू, कोई काम कार नहीं करता, वेले बैठा रहंदा, एक काम इस नु करन वास्ते भेजिया सी ओ भी उजाड़ के आ गया। क्यों नानक किवें क्यों कीता, मैता कालू ने जदों पुछया ते गुरु नानक सच्चे पातशाह बाल अवस्था विच कहन लगे पिता जी इदे खेत नु ता कुछ होया ही नहीं, इवें आके इत्थे शिकायत करन आ गया है।

मैं संसार नू की जपावा। आवाज आई उस जोत विचों, नानक तू संसार नू जपाउना है, जगत जलंदे नू ठारना है, ए उपदेश देके। उस जोत विचों आवाज आई,

बाहर ही नहीं निकल रहा। सिपाही जयराम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा, नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी, भरोसे वाली सी, कहन लगी किवें ना आखो, मेरा नानक संसार विच डुबण वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारण वास्ते आया है। नानक कदे डुब नहीं सकता, ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवे। और समा पा के

अपना काम भूल गए। जे राजे की मालिश कर ए ना गया राजा इन सजा देवेगा। परमेश्वर ने आप सहन नाई

लेखना कबीरा तूरत केल के पुड़िया बांदी दे दिल सो चार को पेखना अंत खे पीछे सुनी दे डरावनी सुनी दे डरावनी जा जी विचों जाए पाए बल

चले चलना हार विकार ले मनु गंडे दिया छे मार तोड़े दिया चिट्ठी नू जिमें पुछे।

छिन छिन और देहात है, फूटे कर जो पानी सो दिन आवन लागा, सो दिन आवन लागा। मात पिता पाई सुत बनता, कहां को है कांका।

जानी जितलो व्यवहार है जको तू जानो जितलो व्यवहार है जको तू जानो नानक हर गुण गाए ले सब सुख समान हर गुण गाओ मना सतगुरु सेव प्यार।

रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिदासी कावी से कुसाई खां सबे उठ जासी।

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समरथ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करता है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट